0: कह डोरा डोरा
1: डोरा डोरा
0: सब्बास
1: सब्बास सब्बास
2: नमस्कार सिला मैडम
0: के
2: अरे मैडम एते शीघ्र भूली गले
0: दलबीर तमे ठीक केमिति आसिलो काहे की आसिलो
2: केमिति आसिली पर कथा काहे की आसिली तमको एठू घर को ले जीवा पाई
0: ना चली जाओ तमे मु कुआडे जीबिनी
2: जीवनी ए जबरदस्ती नहीं गाड़ी रे बसाओ
3: चलो चलो कहूची
0: मुझे भी नहीं
3: चलो
0: मुझे भी नहीं
3: चलो
0: छोड़ दियो मुझे
3: चलो
0: छोड़ मुझे भी नहीं मुकुआ मुझे भी नहीं छोड़ दियो

0: बाबा केमती अछंती
1: से सोई चंती
0: गुड
2: अच्छा डॉक्टर आपण अंकल को जति की थरो विजिट करूछंती सब पेशेंट मानको सेति की थरो विजिट करूछंती तो
0: हां
3: हां ना आ किछि सुंदरी जे देखि कि बारंबार पळे आछि विजिट करबा नारे मते डिस्टर्ब करबा पई लंगोडा कोठिकार
0: कोन ओटे कहिला
2: आई से थैंक यू डॉक्टर आपण अंकल आ स्थितिर जो भलिया केयर नौ चंती
0: अरे नो नो दिस इज आवर पार्ट ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अच्छा स्थिति बाबा उठिले दि तीन घंटा पर टेम्परेचर चेक करबा जदि नॉर्मल थाए तबे तांको दि दिन भितरे डिस्चार्ज कर देबा
2: आ जदि नॉर्मल न थाए
0: तबे आ 8-10 दिन किछि टेस्ट पे हॉस्पिटल रे रहिबाकू पड़िबो
2: डॉक्टर बरंग 8-10 दिन रखी पूरा फिट हेगला परे आपण डिस्चार्ज करंतु
0: आश्चर्य के चाहे जते शीघ्र संभव डिस्चार्ज होइ जिबा पई हेले
3: तू बडे बुझबो डॉक्टर डिस्चार्ज हेगले मो स्थिति सहित एते देखाई परबि नै
1: नै डॉक्टर संकेत सबुबेले मितिका फनी
0: अच्छा अच्छा मुताले आछि हैव अ गुड डे
3: गुड डे डिस्चार्ज कथा कहि कि दिनटा पर बैड कर सारलुनी
2: अब अच्छा स्थिति तमे जा घर फ्रेश हे केसिबो मु एठी अंकल को पखरे आछि
1: अरे ना ना आई एम फाइन बरम तमे जाओ घर के आसीले मु जेबी ताछड़ा दी तीन घंटा पर टेंपरेचर चेक करबा को डॉक्टर तो आसीबे ना
3: मते विदा कर दोछो
1: You are mad. Okay, mua suchi.
3: Okay, bye.
2: Sister, sister,
3: sister, you look so beautiful.
4: Mu jani chi. Aao jodi kichi nua jani cha, kuha.
2: Sister, jani ne boli to pacharuchi.
3: Acha sister kahil dekhi, kon kale temperature ta sange sange badi jibo.
4: Tamare jani ba kon darkar?
3: Ui, kuha na.
4: କାଖଦେଲେ ରସୁଣ ଦେଖିଦେଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଯିବ
3: ଓ ଏତିକି କଥା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ସିଷ୍ଟର ଲଭ୍ ୟୁ
4: ପାଗଳ
3: ଶଶୁରଜୀ ନିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଶଶୁରଜୀ ମୋର ଆଉ ସ୍ଥିତିର ରିଲେସନ୍ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 8-10 ଦିନ ଏଠି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣ ସେମିତି ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାଖ ତଳେ ରସୁଣ ରଖିଦେଉଛି ଓକେ ସ୍ଥିତି ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଇଁ ବି
1: ସଙ୍କେତ ସଙ୍କେତ
5: ଥାଉ ମା ସେ ନିଦରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉଠାନା
1: ଆରେ ବାବା ତମେ ଉଠି ପଡ଼ିଲଣି
5: ହଁ ମା ଏଇ 5 ମିନିଟ ହେଲା ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସଙ୍କେତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇଲିନି ପର ପିଲା ହେଇ କେତେ କଲାଣି ଆମ ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ
1: ଏମିତି ଜଣେ କି ନିଜର ହୁଅନ୍ତା କି ଯାହା ଭରସାରେ ଯାହା ସାଥିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଚୁଟକିରେ ବିତି ଯାଆନ୍ତା

0: हेलो पापा।
1: माँ रिमा तू कोठी अच्छु?
0: पापा मु मंदिर को आसी छी।
1: अरे खुशी खबर, वेरी गुड न्यूज़, तू शीघ्र घर को आसे।
2: ठीक अच्छे पापा, मु एबे जाई पहुंचु छी।
1: ओके ओके
3: बाबू,
1: तो पूरा मार्कशीट कौन देखिबी? आर थर तो परीक्षा रे थर्ड हेइतिला, आ इथर गोटे को पोजीशन रे थिबो के जानी?
3: मु किछि जानिनी बाबू, मूर्ख कहले चले। हेले ई जो कागज टी देखिकरी दुकानी कहला मो पो कोडे भलो फळ करछि।
1: अरे तू कोड कहउछु? देख मार्कशीट देखा। ओ माय गॉड, तो पुओ खाली पास करिनी, मो झियो ठारु 2 नंबर अधिक रखिछि। एटा केमति संभव होला?
3: ता दिन राति परिश्रमर मूल्य असंभव को संभव करछि बाबू। मु भी आजि बहुत खुशी।
1: देख एथरा चल जिबा।
3: आज्ञा आसंतु।

वाक्जपदं शरणं प्रपत्ति अज्ञानमोह विकलेन कृतोपराधः सक्तस्वमीश जगदार्ती विनाशनार्थम्। हे भक्तबान्धव सदा क्षमस्व प्रपन्न।

0: डोरा, ये कौन डोरा? तुम्हें कांदुच
1: ना मो मैम साहब, दुख कथाटा तो कहु कहु आखिर टिके पानी चली आसला ना।
0: तापर घेनुआर कौन है?
1: कहवा लोकर कौन है देख ल। आ घेनुआर।

0: मिट्टू
1: कहा डोरा डोरा
0: डोरा डोरा
1: शाबाश
0: शाबाश शाबाश
2: नमस्कार सिला मैडम
1: की
2: अरे मैडम इतने शीघ्र भूली गले
1: दलबीर तमे ठीक के मिति आसिलो काहे की आसिलो
2: केमिति आसिली पर कथा काहे की आसिली तमकु एठु घर को ले जीवा पाई
1: ना चली जाओ तमे मुकुआडे जीबिनी
2: जीबनी ए जबरदस्ती नहीं गाड़ी रे बसाओ
3: चलो चलो कहूची
1: मुझे भी नहीं
3: चलो
1: मुझे भी नहीं
3: चलो
1: छोड़ दियो मुझे
3: चलो
1: छोड़ छोड़ मुझे भी नहीं मुकुआडे जीबिनी छोड़ दियो

0: हेलो
1: हेलो, प्रेमिको शिरोमणि मणि।
2: मणि हाय, केमती अछू? मेडिकल ड्यूटी, शीघ्र पहुंची जा प्लीज, मात्र अध घंटे पाई।
3: अध घंटे हैला मु काउंटर रे ठिया हिची। मु बिलिंग टा टिके कर दियो।
4: करि दउछ मैडम, सांगे सांग कर दउछ।
5: हे हे,
4: हेलो,
5: तम सहित टिके कथा थिला।
4: काउंटर रे गहळी देखुछ ना, टिके परे कथा हे परिबा।
5: अर्जेंट अछि, प्लीज प्लीज
4: शीघ्र कहो।
5: से झीटा जो शॉपिंग करुच्छी,
4: से झील को तुम्हें केमती जान लो?
5: कहीं तुम्हें जान कि
4: हाँ, तांको फैमिली मो सुपरमार्केट रो रेगुलर कस्टमर। कह कथा कौन?
5: से जहाँ किणव 10% डिस्काउंट दब। मु तुमको से पैसा भी देदेवि से गला।
4: ना ना, मुमती कर
5: सांग सांग केते कौन करे? आमे मोपी करें
4: सांग। तुम्हें मोर के सांग हल
5: ए 2 मिनिट आगु। प्लीज देखो ना, मो स्थिति को भल पाऊँ। एबे मो लवटा वन साइड अच्छी। प्लीज टिके हेल्प करो ना, तुम्हें भी तो कहा को भल पाऊ ना, भगवान तुमको हेल्प करिवे। प्लीज प्लीज प्लीज।
4: ओके
5: ओके ओके, थैंक यू। हाँ, ताको डिस्काउंट देला बेले कहिबो तुम्हें मते जानिछो आ मु ताको जानिछि, सेइथी पई तुम्हें ताको डिस्काउंट दउछो।
4: हौ,
5: थैंक यू। अच्छा सांग, तुम नाटा कौन?
4: राजा।
5: थैंक्स राजा। हे स्थिति, तमे एठी? व्हाट अ सरप्राइज
6: संकेत, तमे बाबांग पखरे?
5: डोंट वरी डोंट वरी, मो सांग अछि। मते दिके घरे किछ जिनिस पहुचैबार थिला त
6: हेले तमे एठी केमती?
5: एठी एठी मु त सबु बेले।
6: तमे एठी चाकरी करू छौ?
5: ना ना ना ना ना, आमो घर को सबु बेले एई सुपरमार्केट रु ही जिनिस जाय।
6: हेले तम घर एठु तो बहुत दूर रे।
5: हाँ, अब हेले
6: हौ हौ, मते टिके आगरु कॉस्मेटिक सेंटर को जिबार अछि।
5: ओके ओके, मते भी तो सेठी के जिबार अछि, चल ना। को क्रीम टा नबो? ओ फेयर एंड लवली। हाँ, आम घर भी तो समस्त फेयर एंड लवली यूज करंदे ना। मोर तो 3 मास होई छि।
6: व्हाट
5: माने ए फेयर एंड लवली यूज करिबा? हेले तमे फेयर एंड लवली यूज करिबा कोन दरकार जे? तम तो एमिति भी सूर्य गुटे भी बेसी फेयर ना। ओ सर्फ एक्सेल, आम घर भी सब बेले सर्फ एक्सेल। मु तो सर्फ एक्सेल छोड़ा आउ को डिटर्जेंट पाउडर सफा हेले जम्मा पिंदनी।
6: अच्छा।
5: चा
6: कौ चा तम घर यूज हुए? कुहना तम घर कौ चा यूज हुए?
5: आम घर ताजमहल टी। शाहजहान मो इज्जत रखी दियो, मो तुम ताजमहल को व्हाइट वॉश कर देबी। प्लीज प्लीज प्लीज। आम घर ताजमहल टी?
6: आम घर आई मीन आम घर में ताजमहल टी।
5: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, आम मन कर पसंद के तो मैच कर छी ना।
6: एग्जैक्टली, मो भी से आ बाबू जी।
5: हां हां, अच्छा आओ कौन नबो?
6: ना आओ किछ नहीं, बस ए
5: हां मो भी इटे यू।
6: तुम्हें भी स्टे फ्री?
5: मु भाभीली ब्रेड पैकेट।
6: ओके ओके, मोरो शॉपिंग है गला, मु आसु छी। एक्सक्यूज मी प्लीज, मोरो बिलटा दे देबे?
4: ओके।
5: हे राजा, डिस्काउंट डिस्काउंट 10%।
4: एनी बिल तमरो 2000 टंका, तमे 1600 टंका दियो।
6: काहेकि
4: ना तमे संकेत रो चिन्हा परचो, आ संकेत मोरो, सेइथि पई मु तमकु 20% डिस्काउंट देली।
6: अच्छा, हे संकेत।
5: हां मते देखु छ?
6: हां देखो ना, तमो सांगो केते भलो, से मते 20% डिस्काउंट दे जंते।
5: हां हां, राजा बहुत भलो पिला, से मोर बहुत भलो सांगो, चाइल्डहुड फ्रेंड। मु ही तो ताको ही सुपरमार्केट आरंभ करबा पई प्लान दे दिली ना। नाराजा?
4: यस ऑफ कोर्स।
6: हौ मु एबे आसुची, मते हॉस्पिटल जिबार अछि।
5: हां हां, मु भी तो जिबी ना, तमे चलो, मु तमे पछे पछे आसुची।
6: ओके बाय बाय राजा।
4: बाय
5: बाय। हे राजा,

0: हरी
1: हरी हरी कुआडे गला से ड्राइवर काली ठारु बारबारी करी कहू छी सखाळ 10 टारु प्रथमे साइबर कैफे तापरे अन्य काम ए ड्राइवर रे एपर्यंत देखा ने
2: बाबू नमस्कार
1: हो हेला तोर आसीबा सबु बेले डिले खबरदार एथर कहि दउ छी ठीक समय आसीबा को चेष्टा कर नहले मु बाध्य होई ड्राइवर चेंज करबि तू कोन जानिनु आज प्लस 2 रिजल्ट आउट होउ छी बोली चल शीघ्र चललु
2: आसंतु आज्ञा
1: हरी
2: आज्ञा बाबू
1: ए आगो दुकान पाखरे गाड़ी रख
2: आज्ञा
3: कौन है आज्ञा
1: आज प्लस 2 रिजल्ट आउट होई छी ए ए रोल नंबर टा नियो आ देख लो
3: ए झियोटी आज्ञा फर्स्ट क्लास पाई छी
1: सत कहू छ ए ए ए इधर तमरा केते केते टका रखिबो कहलो रख रख रख रख अरे हरी लुचे लुचे कोन देखु छु
2: ना ना ये के सेमति किछु न है
1: अरे कोन लुचे रखि छु कोन सेटा की कागज मते देखा अरे एटा तो एडमिट कार्ड
2: हां हां आ गया एडमिट कार्ड ता मो पुओ संतोष रो घरु आसिला बेले बार बार डाकी कहितला ता रिजल्ट देखि आसीबा पई
1: ओ ताले तो पुओ मो झियो एकाटी परीक्षा देतिले ओ हेला ए धो टंका
2: आ गया
1: अरे ने खुशी रे दउची रखे मो झियो रिमा फर्स्ट क्लास पाइची सेई खुशी रे दउची तते
2: सतरे बाबू आमो रिमा मा फर्स्ट क्लास पाइचंती
1: अरे हरी मो झियो सबु स्वप्न सत करिची कॉलेज रे केते जण पिला को भितर से फर्स्ट क्लास पाइची आजि मो मान सम्मान सबु बडी आइची तू छिडा आलु काई की कहलु जा जा तो पुअर रिजल्ट देखि आसीबु जा
2: आ गया जाउ छी आ गया

0: हेलो पापा।
1: माँ रीमा तू कोठी अच्छु?
0: पापा मु मंदिर को आसी छी।
1: अरे खुशी खबर, वेरी गुड न्यूज़, तू शीघ्र घर को आसे।
2: ठीक अच्छी पापा, मु एबे जाई पहुंचु छी।
1: ओके ओके
3: बाबू,
1: तो पूरा मार्कशीट कौन देखिबी? आर थर तो परीक्षा रे थर्ड हेइतिला, आ इथर गोटे को पोजीशन रे थिबो के जानी?
3: मु किछि जानिनी बाबू, मूर्ख कहले चले। हेले ई जो कागज टी देखिकरी दुकानी कहला मो पो कोडे भलो फळ करछि।
1: अरे तू कोन कहउछु? देख मार्कशीट देखा। ओ माय गॉड, तो पुओ खाली पास करिनी, मो झियो ठारु 2 नंबर अधिक रखिछि। एटा केमति संभव होला?
3: ता दिन राति परिश्रमर मूल्य असंभव को संभव करछि बाबू। मु भी आज बहुत खुशी।
1: देख एथरा चल जिबा।
3: आज्ञा आसंतु।

0: डोरा, ये कौन डोरा? तुम्हें कांदू चा?
1: ना मो मैम साहब, दुख कथा तो कहु कहु आखिर टिके पानी चली आसला ना हो।
0: तापरे घेनुआर कौन है ला?
1: कहिबा लोकर कौन है ला देखिला? आउ घेनुआर?

0: चला मैम साहब चला।
1: अच्छा डोरा मु गोटे कथा कहिबी?
0: कहुना मैम साहब।
1: मु जदि कहे मोर किछि मने पडुनी बोली ताहले भी मते तडी दबो?
0: तमे तो कहिला
1: पुनी से मु कहउची।
0: कोउटा सत जे
1: कोउटा सत कोउटा मिछ ए जाय भी मु ठीक करि परिनी। खाली एतिकि कह डोरा मोर न मने पडिबा जदि सत हुए पुनी तम घर को मते फेरै नबो।
0: इस

0: मिट्टू
1: कहा डोरा डोरा
0: डोरा डोरा
1: शाबाश
0: शाबाश शाबाश
2: नमस्कार सिला मैडम
1: के
2: अरे मैडम एते शीघ्र भूली गले
1: दलबीर तमे तमे ठीक केमिति आसिलो काहे की आसिलो
2: केमिति आसिली पर कथा काहे की आसिली तमको एठू घर को ले जीवा पाई
1: ना चली जाओ तमे मुकवाड़े जीबिनी
2: जीबोनी ए जबरदस्ती नहीं गाड़ी रे बसाओ
3: चलो चलो कहूची
1: मुझे भी नहीं
3: चलो
1: मुझे भी नहीं
3: चलो
1: छोड़ दियो मुझे
3: चलो
1: छोड़ छोड़ मुझे भी नहीं मुकवाड़े जीबिनी छोड़ दियो

0: कौंडेई, ए कौंडेई, कौंडेई, अरे कौन करछो?
1: ए जो झड़ तोफान आम को सीना किसी ना हेले तमें तो सहरी लोक डरी जीव से पूरा मुझे सहल चली आसली।
0: अरे कि कहू न कौन जे कौंडेई, ओ कौंडेई,
1: कौंडेई, कौंडेई, ए कौन पत्थर ऊपर रास्ते जे छकी
0: नहीं नहीं नहीं कौंडेई तमें मत छाड़ी कड़े जापरबनी तमें मत छाड़ी कड़े जापरबनी कौंडेई कौंडेई कौंडेई
2: डोरा कौन है डोरा
0: साहेब मो कौंडेई मत छाड़ी चली गला साहेब
2: कौंडेई
0: हाँ साहेब मो कौंडेई सॉरी मैम साहब से ही मो कौंडेई
2: डोरा मु निर्बंध मु आसी मो सांगेरे तुमको सहर नहीं जीवा पाई हेले
3: हेले कौन अभिजीत अरे डोरा अभिजीत ठारु मु तो विषय सब शुणी अरे से जेमती मो पुओ तू भी सेमती भाईर शुभ कामरे भाई हे ठिया हबनी
0: साहेब
2: से मो बापा डोरा बापा ठीक कहिछंती तमे आम सांगेरे जीव हुए तो सहर रे तुमको तुमर कंडे मिल जीव
4: डोरा
5: यू ब्रूट टंका दरकार ना तुमर बहुत टंका दरकार ना ए घर बैंक बैलेंस कह तुमर कौन दरकार कह कौठी मु दस्तखत करबी नहीं जाओ सब मते खाली मो डोरा पाखरे छाड़ी दियो
4: मते तोर अनुग्रह दरकार नहीं मो जानी छी मते कौन करबा को हबो नाटक कर नासिला आज तोर निर्बंध सेमाने समस्ते पहुंचुछंती रेडी होई बाहर को आस
5: ना मुझी भी नहीं
4: तते अल्पत जीवा को हबो
5: नगले
4: तू भलो करी जानू परिणामटा कोन हबो
5: मारी दबो ना मारी दियो हेले मने रखो डोरा रो परिचय छड़ा मु अन्य कहार परिचय रे बंचिबा को चाहेनी
4: शट अप
6: सर अभिजीत बाबू आ तांका बापा आसलेनी आ तांका संगरे से डोरा भी आसी छी
4: এথর বোধে সেটি যাবার তোর কোনসি আপত্তি নাহি কিন্তু মনে রখ যদি সেটি কিছু নাটক করিবা পে চেষ্টা করু তাহলে আজি হব ডোরা জীবনর শেষ রাতি আসাদ আলবীর
1: আজ্ঞা দীনেশ বাবু আউ ডেরি কলে কাহিকি আম বহুকু ডাকন্তু
4: আজ্ঞা সে আসুচি এই তো সে আসিলানি
0: কণ্ঢেই কণ্ঢেই কণ্ঢেই तमें मत छाड़ी कहीं चली आसल कंडे तमें मत छाड़ी कहीं चली आसल कंडे मु तुमको बहुत खोजिली पाइली कंडे तमर कौन मन पड़गला कि
4: दलबीर
2: रुह डोरा कौन है डोरा ये हूँ मो कंडे तमर पसंद है तो
0: साहेब तम कंडेई ना अबिकल मो कंडेई परीक्षा केमिति पसंद हबनी कहिल मोर पसंद हेछि साहेब भारी पसंद हेछि तमे मोर भारी पसंद हेछ कंडेई ना ना ना ना तमे मोर भारी पसंद हेछ मैम

0: काका?
1: तमो काका एक नुहंती सिला मैडम सांगरे राणा उ प्रताप
2: सेई जंगल ताओ
3: आउ सेई जंगल रे एई फॉरेस्ट ऑफिसर सह
2: अमर गोटे हिसाब बाकी रही जाय छी तू टेईबा कु चली आसी छु
4: हिसाब तो आज तमरो हबो राणा साहेब आम उपर जेते अत्याचार करचो ए गा छियों को इज्जत नैचो सबुरी आज हिसाब हबो के भी एठु जीवन नै की जाई परिबेने ए गा बाला उठे टंगिया
5: नाइ रागा हिसाब तो हबो हेले तमे नुहे ए मानन को हिसाब आइन करिवो मु जानी थिले दिनेश बाबू एमिति किछि कांड कारखाना आपन निश्चय करिवे तेनु एई तो पुलिस आसी गलेनी राणा आउ प्रताप एपटे गाँव बाला हाथरे टंगिया सेपटे पुलिस हाथरे हैंडकप चॉइस इज योर्स से जेल तो चलो सिला
6: ठीक अच्छी मु तम पाख को सबुदिन चली आसली डोरा
7: ओ मैम साहब
6: ना कंडे तम कंडे
7: ना डोरा र के ही नथिले कि के ही नहंती
6: मोर भी आज तम छड़ा के ही नहंती डोरा मु सबु किछि छाड़ी तम पाख को चली आसी छी
7: मीच कथा डोरा निजो आखिरे देखी आसी छी तमरो सबु अछि सभी अछंती साहेब परि ठाकुर अछंती तमरो तमरो कोन अभाव अछि
6: ठीक कहि छ डोरा तम साहेब ठाकुर से ही मते मो डोरा पाख को आनी दै छंती
8: माने
5: तमे थरे मो जीवन फेरै थिलो डोरा आज तम को किछि फेरैबारो सुजोग मते मिलि छी निराश करदेव खाली थरे तुम मुहरु कंढे डाक शुणिले मु खुशी रे खुशी रे एठु चली जीवि डाक
6: डाकी बनी
7: एते रागी थिली आउ एते जल्दी डाकी देबी हाउ साहेब खाली तमे कहुचे बोली तम कथरे डाकुची कंढे
6: माने मु तमकु भल

0: हेलो पापा।
1: माँ रीमा तू कोठी अच्छु?
0: पापा मु मंदिर को आसी छी।
1: अरे खुशी खबर, वेरी गुड न्यूज, तू शीघ्र घर को आसे।
2: ठीक अच्छे पापा, मु एबे जाय पहुंचु छी।
1: ओके ओके
3: बाबू,
1: तो पूरो मार्कशीट कोन देखिबी? आरो थरो तो परीक्षा रे थार्ड हेइतिला, आ इथरो गोटे को पोजीशन रे थिबो के जानी?
3: मु किछि जानिनी बाबू, मूर्ख कहिले चले। हेले ई जो कागज टी देखि कि दुकानी कहिला मो पो कोडे भलो फळ करछि।
1: अरे तू कोन कहउछु? देख मार्कशीट देखा। ओ माय गॉड, तो पुओ खाली पास करिनी, मो झियो ठारो 2 नंबर अधिक रखिछि। एटा केमति संभव होला?
3: ता दिन राति परिश्रमर मूल्य असंभव को संभव करछि बाबू। मु भी आज बहुत खुशी।
1: देख थरा चल जिबा।
3: आज्ञा आसंतु।

0: रिमा रिमा
1: कौन है ला पापा
0: इने इने तो मार्कशीट मन भरी देख मुटी के ऑफिस है उसी हाँ जीबा पुरबुरो इतिकी कहुची तो सफलता देखी आची मो छाती कुंडे मोट ही जोची मोर आशीर्वाद तो जीवन रो सबु कामो एमिति तू सफलता सहित करिचा दरकार पड़ले मु सबु क्षेत्र रे तते सहाय्य करबी हाँ आसुची रे
1: हरिमौसा तमें कहीं चुप हो कौन मु फर्स्ट क्लास पाई एक सुनी तमें खुशी है ना
2: किए कहला मु खुशी नुह बोली रीमा माँ सत कह आज बहुत खुशी मो पु खुशी जी खुशी नुह तुम खुशी मु दी गुण खुशी संतोष भी परीक्षा फर्स्ट क्लास पाई
1: तमें सत कह मौसा ओह माय गॉड ओह माय गॉड संतोष भी फर्स्ट क्लास पाई चंदी एक कथा जदि सत होई थाए तांको आज निश्चय गोटे गिफ्ट देबी मु
2: हौ मा मु आछी मोर तने केते काम
1: सतरी संतोष केते बळे घंटा रो मिनिट घंटा परी तमे मु आगरे ताऊ केते बळे सेकंड घंटा परी मु तमो पछरे हम दुई जण को भितरे तृतीय जण केही केबे भी आसी पारिबेनी संतोष आई लव यू संतोष आई लव यू